0: आज प्रोग्राम का आगाज हमने माँ की दुआओं से किया और ऐसी एक माँ है हमारी फातिमा एडम्स जो बहुत अभी परेशान है क्योंकि उनके बेटे अयूब आजकल बहुत बीमार है. तो दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिल अता दे. और आज फातिमा पा की सालगिरह भी है. फातिमा पा बहुत बहुत बधाई हो आपको और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदरुस्ती दे, हिम्मत दे, ताकत दे कि आप इस मुश्किल वक्त अल्लाह आपके साथ रहे इंशाल्लाह. हमारा अगला कमाम है खामोश दुआ.
1: जवान सूख जाते हैं और लफ्ज खत्म हो जाते हैं.

बेशक हाजी, अब मीना जाने की तैयारी कर रहे होंगे। कल ज़िलहज की 8 तारीख है सऊदीया में और हमारी 6, तो कल हमारे हाजी भाई बहन सब मीना में जाने की तैयारी करेंगे और मीना पहुंचेंगे इंशाल्लाह। मैसेज आया है शमशु अपा की तरफ से जो कहती है, अस्सलाम वालेकुम सफिया, आई सेंड दिस बर्थडे मैसेज दिस मॉर्निंग बट माय सन डिड नॉट हियर, काइंडली प्लीज रीड आउट। ओके, दिस बर्थडे मैसेज इज फॉर परवेज इदरूस हु इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुमारो। हैप्पी बर्थडे, मे अल्लाह ग्रांट यू मेनी मोर फिल्ड विद गुड हेल्थ, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस, लव एंड ऑल थिंग्स ऑफ गुडनेस। मे ही ग्रांट आफिया इन ऑल दैट यू डू इंशाल्लाह। विशिंग यू एन अमेजिंग डे एंड योर हेड इंशाल्लाह। Mom Shamshunisa, wife Rabia, son Muhammad Zakaria and daughter Umaira and the crazy family, Jazakallah khair. Bahut bahut shukriya. And aage Shamshu Appa keh rahi, she's enjoying the selection and she would love to speak Urdu inshallah. Zarur kyun nahi, aap bhi zarur sikhenge Urdu, bahut hi khoobsurat zuban hai. Kuch log kehte hai ye gulabi Urdu hai, to inshallah Allah Taala aapko bhi himmat de aur aap ye zuban seekhe kyunki ye bahut hi khoobsurat zuban hai. आगे हज की तैयारियां हो रही है, कल ज़िलहज की 8 तारीख है सऊदीया में और आज हमारी 6 तारीख है। ऐ अल्लाह, इस घर की इज्जत अजमत शान और हुर्मत में और इजाफा फरमा और हम तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म, वासी रिस्क और हर बीमारी की शिफा मांगते हैं या रब्बुल आलमीन। इस दुआ को कबूल कर, क्योंकि काफ़ी लोग बीमार हैं, काफ़ी लोग बीमारी से मुब्तला है और परेशान है, तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में यही दुआ है या रब इनकी बीमारियों को शिफा में बदल दे और इनकी परेशानियों को दूर कर। तो अगला कलाम मक्का का हरम की फ़ज़ाए।

बेशक बहुत ही खूबसूरत कलाम और मैसेज आया मेरी प्यारी दोस्त शायदा पाक की तरफ से जो कहती है, आई जस्ट वांट टू से आई लव दैट मॉथ सॉन्ग. एवरी टाइम इट प्लेज इट टचेस माय हार्ट इन अ वे आई कॉन्ट एक्सप्लेन. थैंक यू फॉर शेयरिंग इट एंड फॉर द लाइट यू ब्रिंग थ्रू योर वर्क. मे अल्लाह सुबहान तआला ब्लेस यू, प्रोटेक्ट यू एंड रिवॉर्ड यू फॉर ऑल द गुडनेस यू स्प्रेड. माशाल्लाह माय सिस्टर, यू आर ट्रूली अप्रिशिएटेड. और वो बहुत सारा प्यार और दुआएं भेज रही है. और वैसे ही हमारी प्यारी दोस्त रियाना रोइका वो भी, और हमारी शमशु आपा भी वो प्रोग्राम बहुत पसंद कर रही है. बॉबी भाई की तरफ से मैसेज आया बहुत दिनों के बाद. बॉबी भाई आप कैसे हैं? बॉबी भाई वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सालगिरह मुबारक. जो अगले हफ्ते होगी हमारी प्यारी पुप्पी हाफिज़ा पाक उर्फ आंटी बाम्बा, अल्लाह अपने फजल करम से और नबी के सदक़े में उनको दोनों जहाँ की खुशियाँ सेहत कामिल के साथ अता फरमाया और उनकी हर दिली ख्वाहिश पूरी करे, आमीन. ये आता है आयशा ताजुद्दीन शहनाज, मोहम्मद हुसैन उर्फ मामसी, गफ्फार फैमिली, रशीदा एंड फैमिली, खासकर बानू और बॉबी भाई की तरफ से. और वो कह रहे हैं आंटी बाम्बा 85 ईयर्स की होंगी, माशाल्लाह बहुत बहुत अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदरुस्ती, और उनका साया हमेशा उनके बच्चों पर रखे, उन्हें खुशहाली में रखे. और बहुत अच्छी दुआ यह है कि अल्लाह ताला उनको किसी का मोहताज ना करे, ये बहुत ही अजीम दुआ है. और मैं भी अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरा दम निकले तक मुझे किसी की, तेरे सिवा किसी की मोहताजी ना दे. अगला कलाम मक्के का सफ़र.

जी बेशक, ये आज है 6 तारीख जिलहज की और हमारे हाजी भाई बहन सऊदी में तैयारी कर रहे हैं हज पे जाने की। वो अब कल मीना में जाएंगे और फिर उसके बाद मंगल को अरफात में होंगे। पाक है वो अल्लाह जिसने इस सवारी को हमारे काबू में दिया और हम इस पर काबू नहीं कर पा सकते और हमने अपने रब की तरफ ही लौट कर जाना है। हाजिर है हम अल्लाह, हाजिर है हम, तेरा कोई शरीक नहीं, हाजिर है हम। बेशक तमाम तारीफ और नियामतें तेरे ही लिए है और बादशाही भी तेरे लिए है, तेरे कोई शरीक नहीं। तो अगला कलाम अरफात के आंसू और मुज़दलिफा की रात।

माशाल्लाह मदीना जाने वालों, तुम मुझे भी साथ ले लो। और ऐसी हमारी प्यारी रशीदा अपा, रशीदा धन से जो कह रही है, मेरे लिए भी दुआ करना और हम अल्लाह ताला मुझे भी किसी का मोहताज ना करे। और वो प्रोग्राम को बहुत पसंद करी। बहुत बहुत शुक्रिया रशीदा अपा आपकी दुआओं का, आपके हौसला अफजाई का। आज है 24 मई 2026, 6 जिलहज 1447, हज शुरू होने जा रहा है माशाल्लाह। 1447 का खुश नसीब है वो लोग जो पहुँचे वहाँ पे, और जो जाना चाहते हैं अल्लाह ताला आसानी करे उनके लिए, वो भी जल्द से जल्द पहुँचे। आप नियत करें और अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपके लिए दरवाजे खोलेगा इंशाल्लाह। अगला कलाम है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, चले हाजी हज अदा करने।

जी हाँ, जो मुझे काफी मैसेजेस आए, कह रहे हैं ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत है हज के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि हम भी वहाँ जाना चाहते हैं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको भी बुला ले जल्द से जल्द। अगला कलाम हाफिज मोहम्मद अकरम साहब की आवाज में एक बार बुला ले।

जी हाँ, ये बहुत ही मुझे पसंद आया कलाम. और अगला कलाम जो मैंने लिया है वो एक गज़ल के तौर पे है और ये मैं डेडिकेट कर रही हूँ शरीफा पाक के लिए. इस कलाम में, ये मेरे साथ भी अक्सर होता है, हम अपने आप को भीड़ में भी होके अकेला महसूस करते हैं, ऐसे लगता है कि दुनिया में हमारा कोई नहीं. तो ये खूबसूरत कलाम, अगला कलाम है, दुनिया में भी भीड़ है.

दिया है जनाब राजू खान जी ने, इसको अपनी आवाज दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने, और ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। ये पेशकश है तस्नीम आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की। तो लीजिए सामईन, बहुत हसीन वाकयात हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लीजिए मुलाहजा कीजिएगा ये वाकया 68 साल के बाद पैदा हुए बच्चे की कुर्बानी।

तो कोई सहारा ना मिला, सब अपने मिले पर तेरा जैसा ना मिला। मैं चुप रहा।